खमतेल के गाना के चाचे मगे तंत दउ छे मानते के वाले को अलावा से कोरा अलावा से ते मानते अलावा से मले तु कुछ के बात मानते जे तो अलावा से मेरे बस से मले द पेलो इंग्लिश पेंटिंग दैट इज माय गॉड खमते मैं मत जो मगे तंत दउ वाले को अलावा से Eles dizem, olha,